0: डोरा, ये कौन डोरा? तुमे कांदुच?
1: नाय मो मैम साहब, दुख कथाटा तो कहु कहु आखिरे टिके पानी चली आसला ना हो।
0: तापरे घेनुआर कौन हैला?
1: कहिबा लोकर कौन हैला देखिला? आउ घेनुआर
2: थप थप

0: चला मैम साहब चला।
1: अच्छा डोरा मु गोटे कथा कहिबी?
0: कहुना मैम साहब।
1: मु जदि कहे मोर किछि मने पडुनी बोली ताहले भी मते तडी दबो?
0: तमे तो कहिला
1: पुनी से मु कहूची
0: कोउटा सत जे
1: कोउटा सत कोउटा मिछ ए जाय भी मु ठीक करि परिनी। खाली एतिकि कह डोरा मोर न मने पडिबा जदि सत हुए पुनी तम घर को मते फेरै नबो।
0: इस

0: कह
1: डोरा डोरा
0: डोरा डोरा
1: सब्बास
0: सब्बास सब्बास
2: नमस्कार सिला मैडम
1: की
2: अरे मैडम एते शीघ्र भूली गले
1: दलबीर तमे ठीक केमिति आसिलो काहे की आसिलो
2: केमिति आसिली पर कथा काहे की आसिली तमकु एठु घर गुने जीवा पाई
1: ना चली जाओ तमे मुकुआडे जीबिनी
2: जीवनी ए जबरदस्ती नहीं गाड़ी रे बसाओ
3: चलो चलो कहूची
1: मुझे भी नहीं
3: चलो
1: मुझे भी नहीं
3: चलो
1: छोड़ दियो मुझे
3: चलो
1: छोड़ छोड़ मुझे भी नहीं मुकुआडे जीबिनी छोड़ दियो

0: काका?
1: तम काका एक नुहंती सिला मैडम सांगरे राणा उ प्रताप
2: सेई जंगल ताओ
3: आउ सेई जंगल रे एई फॉरेस्ट ऑफिसर सह
2: आमर गोटे हिसाब बाकी रही जाय छी तू टेइबा को चली आसी छु
4: हिसाब तो आज तमर हबर राणा साहेब आम ऊपर जते अत्याचार करच ए गा छियों को इज्जत नै च सबुरी आज हिसाब हबो के भी एटु जीवन नै की जाई परिबे ने ए गा बाला उठा चंगिया
5: नाही रंगा हिसाब तो हबो हेले तमे नहि ए मानो को हिसाब आइन करिवो मु जानी थिले दिनेश बाबू एमिति किछि कांड कारखाना आपनो निश्चय करिवे तेनु एई तो पुलिस आसी गलेनि राणा आउ प्रताप एपटे गाँ बाला हातरे टांगिया सेपटे पुलिस हातरे हैंडकप चॉइस इज योर्स से जेल तो चलो सिला
6: ठीक अच्छी मु तम पाख को सबुदिन चली आसली डोरा
7: मैम साहब
6: ना कंडे तम कंडे
7: ना डोरा रे केही नथिले कि केही नहांती
6: मोर भी आज तम छड़ा केही नहांती डोरा मु सबु किछि छाड़ी तम पाख को चली आसी छी
7: मिच कथा डोरा निजो आखिरे देखी आसी छी तमर सबु अछि सभी अछंती साहेब परि ठाकुर अछंती तमर तमर कोन अभाव अछि
6: ठीक कहि छ डोरा तम साहेब ठाकुर से ही मते मो डोरा पाख को आनी दे छंती
8: माने
5: तमे थरे मो जीवन फेरै थिलो डोरा आज तमको किछि फेरैबार सुजोग मते मिलि छी निराश करदेव खाली थरे तुम मुहरु कंडे डाक शुणिले मु खुशी खुशी एठु चली जीवि डाक
6: डाकिबनी
7: रागी आते जल्दी डाक देवी हाउ साहेब खाली तमें कौच बोली तम कथा डाकुची कंडे हाँ, सेटा पुनी कौन
0: माने मु तमकु भलो

0: अच्छा
1: ए हाँ तू एडी कैसे लो
2: आसीगली भाई एक्चुअली तमे डाकिबो बोली मु केते बुलो अपेक्षा करथली
1: अबे तू काहे की मो गर्लफ्रेंड ऊपर 4 दिन हला नजर रखिछु
2: ना ना ना ना ना मुंडो झी को उची मिच्छो कथा मु तमो गर्लफ्रेंड ऊपर नहे 4 दिन हला तमो दी जण को ऊपर नजर रखिछि
1: ए ए ए बेसी स्मार्ट हेबा को चेष्टा करना जानिछु जानिछु मु के
2: जानिछि भाई कहबी तम ना किटू तम बापा ना आदर्श रेलवे कंट्राक्टर तुम गोटे मैरिड सिस्टर आउ गोटे अनमेरिड भाई अच्छी भाई जबलेस तुम प्राइवेट कॉलेज रे हेवी डोनेशन दे इंजीनियरिंग पढ़ुछ ना ना ना ना ना तुम पढ़ुन तुम बापा पढ़ाऊँच भल माल मान जौतुक मिली जदि तुम लव मैटर कथा तुम बापा जानते तुमको सीधा नहीं कि रेलवे ट्रैक उपर बांधिक पकईदे
3: सत किटू
2: एकदम सत हाउ तमें भाग्यलक्ष्मी तम बड़ भौणी राजलक्ष्मी तांको उपरे विजयलक्ष्मी तम तले महालक्ष्मी चारि भौणीको भितरे तमे होउछ मझिया भौणी तम बापा दिनबंधु चाकरीरु वीआरएस नै बड़ भौणी मानको पई पुओ खोजुछंती तम लव स्टोरी जानिले सुइसाइड करिबा पई बाट खोजिबे आ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लवर्स यू बोथ विल बी सेफ जदि तम दी जण तम लव मैटर को सीक्रेट रखिबो
3: हेले आमो बिषयर त केही जानि नांती
2: मु तो जानिछु ना
1: ए तू कोन जाउ
2: सीधा सीधा पॉइंट ऊपर को आसी गला भाई
0: बड़ पाठ कहबा को खराब लागो जी भाई आसु ना कान पाखरे कहि देबी
2: थैंक्स भाई जेबे मोर दरकार पड़िबो मते डाकिबो बाय
4: ए ए ए ते साइकिल ले को हाथ मारचो सेटा मो साइकिल
2: ओहो सेटा आपणकर की मु भाबिली नवीन बाबूंकर सरकारी प्रॉपर्टी भाबिकरे नउथिली
4: हां खेचड़ा कोडिकार आज तमे दि जण हाबुडे पड़ी गेलो बदे
3: सिक्युरिटी भाई से पिलाडा किए से
4: हां सेटा लफंगा टका पार्क लवर मानको खोजी खोजी धमकेई पैसा दे करे तमको कोन चुना लगेला
1: मो वॉलेट
3: ओ मो सुन्ना मुदी
4: हौ जहां बरता हेलानी टोकाउ किन सावधान थिवो दिन रे तारा देखेई दबा पिला से
5: आकाशरे तारा गुड़ाक बदमाश आउ मु तुम प्रेमिक शिरोमणि मणि
2: एथर कभी हेलानी
6: होय हो मणे भाई घंटे हेलानी कौन तमे डायलॉग टा घोसी होच
2: अबे हेबिनी केमिति कहि बहु कष्ट करि गोटे नवम श्रेणी झियो को पटेइथिली रे
7: प्लस टू पढ़ला पर्यंत जहा मागिला ता देली हेले जेबे टू रेडियो चॉकलेट रे से बदमाश संग्राम टा राति 10:00 बेले आसी मो संगे कथा नहि मो गर्लफ्रेंड टा ताकु राति गोटे पर्यंत सुणु छिबे खाली सेति के नुबे ता संगे गपु छिबे ताकु दिन को 10-15 टा खंडे एसएमएस पठु छिबे
2: हेलो तमोर कोन असुविधा होची
7: अबे असुविधा होबनी केमिति मोबाइल सिना से धरुची हेले मोबाइल रे रिचार्ज भाउचर परा मु पकोउची
2: सेति पै मु भी लागिची रेडियो जकी हेबी रेडियो जकी
6: हेलो तमे कोन लव गुरु संग्राम भले लव प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करि परिबो
2: अबे धेत मु हेली प्रेमिक शिरोमणि मणि अरे लव गुरु हबा पई खाली निदुआ निदुआ कथा कही देले हबो निबे सेइति पई दरकार एक्सपीरियंस
8: तमरो पुनी लव रे की एक्सपीरियंस अछि
2: हां समुद्र रे केते ढेउ मरु भूमि रे केते बाली आउ ये प्रेमिक शिरोमणि मणिरो प्रेम रे केते एक्सपीरियंस से कथा मते पचारनी हाई स्कूल रु आरंभ करी आजि पर्यंत गोरी काली सुंदरी असुंदरी गेड़ी डेंगी मोटी पतली जो झियो को देखिले मते लव हे जाए रे लव हे जाए मु ताकु नै स्वप्न देखे स्वप्न राइज रे तासित बुले तासित रोमांस करे फिल्म देखे गुपचुप खाए ताकु छुए
6: तापरे
2: आउ कोन गालरे दी चटकणी बाजिले निद भांगी जाए उ अरे एक्सपीरियंस रो कथा यदि कहू ये पाखा पाखी रे जेते सब घर अछि सब घर रो चप्पल स्टैंड रु लेडीज चप्पल नै आसो चप्पल रो नंबर देखि कि आउ हील देखि कि मु कहि देबी से झियो रो ना कोन आ ता एड्रेस को
9: अरे ये अड़ को संकेत आसुचि
6: अबे सब दिन हम पैसा रे ऐश करूची आज केही

0: हेलो पापा।
1: अरे माँ रीमा तू कोठी अच्छु?
0: पापा मु मंदिर को आसी छी।
1: अरे खुशी खबर, वेरी गुड न्यूज, तू शीघ्र घर को आसे।
2: ठीक अच्छे पापा, मु एबे जाई पहुंचु छी।
1: ओके ओके
3: बाबू,
1: तो पूरो मार्कशीट कोन देखिबी? आरो थरो तो परीक्षा रे थर्ड हेइतिला, आ इथरो गोटे को पोजीशन रे थिबो के जानी?
3: मु किछि जानिनी बाबू, मूर्ख कहले चले। हेले ई जो कागज टी देखिकिर दुकानी कहला मो पो कोडे भलो फळ करछि।
1: अरे तू कोन कहउछु? देख मार्कशीट देखा। ओ माय गॉड, तो पुओ खाली पास करिनि, मो झियो ठारो 2 नंबर अधिक रखिछि। एटा केमति संभव होला?
3: ता दिन राती परिश्रमर मूल्य असंभव को संभव करछि बाबू। मु भी आज बहुत खुशी।
1: देख थरा चल जिबा।
3: आज्ञा आसंतु।

0: हे प्रभु जगन्नाथ, बड़ विषम संकट रे पड़ी ए दिन अकिंचन गजपति। से दिन अजाणत तुम महाप्रसाद को अमान्य करथिबा मोर बाम हस्त को छेदन करथिली आउ निक्षेप करथिली मो पुष्प उद्यान रे। आश्चर्य कथा, समाधिस्थ मोर से इच्छेदित हस्तरु सृष्टि हेतला एक वृक्ष। वृक्षर पत्रर महक थिला अति चमत्कार। वृक्षर सुरक्षा पाई ये गजपति सबु व्यवस्था करथिला। बड़ अद्भुत, इते कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थाई सुद्धा निसार्थ से वृक्षर पत्र चोरी हो जाऊ। जेते चेष्टा कले भी चोरर सन्धान मिलूनी। हे दीनबंधु भावग्राही, मो समस्यार समाधान कर प्रभु, मो समस्यार समाधान कर।
1: समस्यार चिंतित हुई निदरे हजिगल कि गजपति। जो दिन तमें निजर भूल बुझिपारी अनुतप्त होइथिल, निजर हस्त को छेदन करी भूमि रे पोति देइथिल, से दिन राति रे ए जगन्नाथ बड़ देउल रे बसी पारि नथिला। तुम अचलाचल भक्ति रे मो रत्न सिंहासन थरी उठिथिला। मु माया रचिथिली, समाधिस्त तुम हस्त को एक सुबासित वृक्ष रे परिणत करि देइथिली। से वृक्षर ना कौन जाणिछ गजपति? दयणा, मोर अति प्रिय गहना। से दयणा पत्र को माळ करि श्री अंगरे पिंधिबा पई मो निसार्थरे तम उद्यानर चोरी करुथिली। चोर को कौन शास्ति तबनि गजपति?
0: मु स्वप्न देखुथिली ना सतरे प्रभु जगन्नाथ मो पाखु आसिथिले। हे प्रभु जगन्नाथ, मते क्षमा कर प्रभु, मते क्षमा कर। सारा संसार को शास्ति आ मुक्ति दौथवा विश्व मालिक को इच्छार सेवक कि शास्ति दब प्रभु, कि शास्ति दब। खाली एतिक कहिब, तमें दयणा चोर नुह, तमें रसिक, दयणा रसिक, रसिक जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ।
2: रसिकिया।

0: डोरा, ये कौन डोरा? तुम्हें कांदू चा?
1: नाय मा मैम साहब, दुख कथाटा तो कहु कहु आखिरे टिके पानी चली आसला ना हो।
0: तापरे घेनुआर कौन हैला?
1: कहिबा लोकर कौन हैला देखिला? आउ घेनुआर।

0: कह
1: डोरा डोरा
2: डोरा डोरा
1: सब्बास
2: सब्बास सब्बास
3: नमस्कार सिला मैडम
1: के
3: अरे मैडम एते शीघ्र भूली गले
1: दलबीर तमे ठीक केमिति आसिलो काहे कि आसिलो
3: केमिति आसिली पर कथा काहे कि आसिली तमको एठू घर को ले जीवा पाई
1: ना चली जाओ तमे मुकवाड़े जीबिनी
3: जीवनी ए जबरदस्ती नहीं गाड़ी रे बसाओ
4: चलो चलो कहूची
1: मुझे भी नहीं
4: चलो
1: मुझे भी नहीं
4: चलो
1: छोड़ दियो मुझे
4: चलो
1: छोड़ छोड़ मुझे भी नहीं मुकवाड़े जीबिनी छोड़ दियो डोर

0: dare to touch my father.
1: अरे माँ तुम्हें पेट तुंड पर करिवो पेशेंट रो अवस्था सीरियस आगे तक एम्बुलेंस रखे हॉस्पिटल नियो.
2: हाँ हाँ एम्बुलेंस.
3: I hate you will be right back.
4: आपण माने सुनुछंती रेडियो नाटक.
5: रेडियो नाटक.

0: ए फकीरा अरे रोसे बास सरला कि ना अरे हाथ टिके फुर्ति कर मो घर ये आसी पहुंची जी लोक हसा हवा कथा कड़े जे सब गले अरे ए संकेत संकेत
1: आगे अंकल
0: अरे राजा को फोन करथिलो कि नै केते बेले बाहरु छन से माने
1: हां अंकल मु कॉल कर दी थिली से माने बाहरी सारी थिले बोधे 5-10 मिनिट रे पहुंची जिवे
0: हौ हौ स्थिति को पचार ल सब रेडी त
1: आगे अंकल पचार जी अंकल स्थिति स्थिति स्थिति
2: संकेत कौन हैला किछि कहू छ
1: नाही अंकल पचारिले तमे रेडी हेलोनी त
2: ओ अंकल सिना पचारिले हेले तमे काहे के पचारु छ मु त तमो आगे ठिया हि छी देखि पारन कि कहो ना मु केमते देखाउ छी
1: भलो खूब भलो देखा जाउ छ तमे
2: कम ऑन तळक बहुपति कोन कहू छ मते देखि मो आखिर आखि मिसै कहो त आजि मोर एकदम निर्बन्ध हला परि लागछि ना
1: स्थिति हां हां स्थिति अंकल मते सेपट बहुत काम दैछन्ती मु आछि

0: मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, सेठी जो चौकी मरा है ची, किए मार्ची की? तमे मार्चो?
1: हाँ।
0: तमर मन पड़ी गला?
1: हाँ।
2: आ,
1: कौन है ला?
0: हाँ, नहीं नहीं, किचन में मेम साहब, कौंटा डा फूटी गला।
1: देख लो डोरा, तमे कित्ते खुशी रे थिलो। हेले मुँह ऐसी बातें ना ठो।
0: नहीं मैम साहब, नहीं, नहीं, चलो, मुँह तामुको नहीं छाड़ दे ऐसी भी।
1: डोरा।
0: चलो।

0: डोरा, ये कौन डोरा? तुम्हें कांदुच
1: ना मो मैम साहब, दुख कथाटा तो कहु कहु आखिर टिके पानी चली आसला ना हो।
0: तापरे घेनुआर कौन है ला?
1: कहिबा लोकर कौन है ला देखिला? आउ घेनुआर
2: थप थप

0: कह
1: डोरा डोरा
2: डोरा डोरा
1: शाबाश
2: शाबाश शाबाश
3: नमस्कार सिला मैडम
1: के
3: अरे मैडम एते शीघ्र भूली गले
1: दलबीर तमे ठीक केमिति आसिलो काहे कि आसिलो
3: केमिति आसिली पर कथा काहे कि आसिली तमकु एठु घर को ले जीवा पाई
1: ना चली जाओ तमे मुकुआडे जीबिनी
3: जीवनी ए जबरदस्ती नहीं गाड़ी रे बसाओ
4: चलो चलो कहूची
1: मुजीबिनी
4: चलो
1: मुजीबिनी
4: चलो
1: छोड़ दियो मुझे
4: चलो
1: छोड़ छोड़ मुजीबिनी मुकुआडे जीबिनी छोड़ दियो

0: काका?
1: तुम काका एक नुहंती सिला मैडम सांगरे राणा उ प्रताप
2: सेई जंगल ताओ
3: आउ सेई जंगल रे एई फॉरेस्ट ऑफिसर सह
2: आमर गोटे हिसाब बाकी रही जाय छी तुटेबा को चली आसी छु
4: हिसाब तो आज तमरो हबो राणा साहेब आम उपरे जते अत्याचार करचो ए गा छियांका इज्जत नैचो सबुरी आज हिसाब हबो के भी एठु जीवन नै की जाई परिबेने ए गा बाला उठे टंगिया
5: नाही रंगा हिसाब तो हबो हेले तमे नहि ए मानको हिसाब आइन करिवो मु जानी थिले दिनेश बाबू एमिति किछि कांड कारखाना आपन निश्चय करिवे तेनु एई तो पुलिस आसी गलेनी राणा आउ प्रताप एपटे गाँव वाला हाथरे टंगिया सेपटे पुलिस हाथरे हैंडकप चॉइस इज योर्स सही जेल तो चलो सिला
6: ठीक अच्छे मु तम पाखक सबुदिन चली आसली डोरा एथर एथर
5: किए
2: ओ मैम साहब
6: ना कंडे तम कंडे
5: ना
2: डोरा र केही नथिले कि केही नहांती
6: मोर भी आज तम छड़ा केही नहांती डोरा मु सबु किछि छाड़ी तमो पाखो को चली आसी छी
2: मीचो कथा डोरा निजो आखिरे देखी आसी छी तमरो सबु अछि सभी अछंती साहेब परि ठाकुर अछंती तमरो तमरो कोन अभाव अछि
6: ठीक कहि छ डोरा तम साहेब ठाकुर से ही मते मो डोरा पाखो को आनी देइ छंती
5: माने तमे थरे मो जीवन फेरै थिलो डोरा आज तमो को किछि फेरैबार सुजोग मते मिलि छी निराश कर दबो खाली थरे तुम मुहरु कंडे डाको सुनिले मु खुशी रे खुशी रे एठु चली जिबे डाको
6: डाकी बनी
2: एते रागी थिली आउ एते जल्दी डाकी देबी हाउ साहेब खाली तमे कहुचे बोली तम कथरे डाकुची कंडे
5: हाँ, सेटा पुनी कौन
0: माने मु तमकु भला पाए
5: इस

0: हेलो पापा।
1: अरे माँ रीमा तू कोठी अछु?
0: पापा मु मंदिर को आसी छी।
1: अरे खुशी खबर, वेरी गुड न्यूज, तू शीघ्र घर को आसे।
2: ठीक अछि पापा, मु एबे जाय पहुंचु छी।
1: ओके ओके
3: बाबू,
1: तो पूरो मार्कशीट कोन देखिबी? आरो थरो तो परीक्षा रे थर्ड हेइतिला, आ इथरो गोटे को पोजीशन रे थिबो के जानी?
3: मु किछि जानिनि बाबू, मूर्ख कहिले चले। हेले ई जो कागज टी देखि कि दुकानी कहिला मो पो कोडे भलो फळ करछि।
1: अरे तू कोन कहउछु? देख मार्कशीट देखा। ओ माय गॉड, तो पुओ खाली पास करिनि, मो झियो ठारो 2 नंबर अधिक रखिछि। एटा केमति संभव होला?
3: ता दिन राति परिश्रम रो मूल्य असंभव को संभव करछि बाबू। मु भी आज बहुत खुशी।
1: देख थरा चल जिबा।
3: आज्ञा आसंतु।